सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 29 जून 2026 सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:24 और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता सुनिए। आपकी बातचीत का विषय है माइग्रेन, कारण और उपचार।
4: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
5: थैंक यू
4: डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपसे एक बीमारी का नाम हमने सुना है माइग्रेन, ये क्या बीमारी है?
5: माइग्रेन हमारे सिर से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जनरली हमें सिर का दर्द आमतौर पर दिखाई पड़ता है और इसका जो ट्रेंड है आने का किसी भी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे बार बार आता है और एपिसोड्स में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये रिपीट होता है, बार बार आता है
4: जी।
5: तो जिसमें आमतौर पर सिर दर्द के साथ हमें उल्टी का मन या फिर उल्टी का आ ही जाना या इसमें कभी कभी लूज मोशन जिसको हम डायरिया कहते हैं वो भी इंड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें तेज़ सिर का दर्द और जो कि हमारे आधे सिर में ज़्यादातर पाया जाता है उसके साथ साथ उल्टी का मन होना और उल्टी का कभी कभी आ जाना ही पाया जाता है।
4: ये तो एक तो डॉक्टर साहब सिर दर्द आम जिसे हम कहते हैं, कभी हर इंसान को इस तरह की बीमारी
5: कभी हो जाती है।
4: ये कुछ अलग है माइग्रेन?
5: माइग्रेन अलग अपने इसी कैरेक्टर के साथ है कि ये बार बार आती है और सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को इस दर्द के आने से पहले किसी हद तक मालूम पड़ जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या प्रोड्रोम हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो पेशेंट को इसका आभास पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत मेरे शरीर के साथ हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं अमूमन 70-80% लोगों के बीच में पेशेंट को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और जनरली 1-2 के बाद उसको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बाकी सिर से अलग है, आपको कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बार बार इसको लाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, तेज मिर्च मसाले खा लेना, उससे ये एकदम से आता
4: अच्छा,
5: है।
4: इसके रूट्स कहाँ पे हैं अगर हम इसके रूट्स जानना चाहेंगे आपसे?
5: रूट्स जानना चाहेंगे तो इतना क्लियर नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन जनरली क्या है कि हेरिडिटरी चलता है, अनुवांशिकी के ऊपर। जैसे कि जिनके पेरेंट्स को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में जनरली आती है, आम तौर पे आ जाती है, नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन जनरली आ जाती है। तो मेन कॉज तो उसका यही आ जाता है कि हेरिडिटरी आता है। लेकिन अगर शरीर में देखें तो इसको 2 थ्योरीज में बांटा गया है। पहली हमारी वैस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं और दूसरी न्यूरोलॉजिक है। और आम भाषा में वैस्कुलर कहेंगे जो हमारी रक्तवाहिनी है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, कुछ उसके कारण है और कुछ हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, ब्रेन्स के साथ हमारे मस्तिष्क के साथ, तो उसके थ्रू भी ये आता है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर इस तरह की बीमारी माइग्रेन?
5: जी बिल्कुल, आमतौर पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 70-80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये माना जाता है कि आमतौर पर औरतों के ऊपर हमारे देश में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। देखने में हम आम आदमी कह देता है कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन घर में अगर आप देखें तो बहुत काम होते हैं। अगर एक आम आदमी घर बिठा कर उसको औरत का काम दे दिया जाए तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, डिप्रेशन एक साथ साथ एक वर्ड चल रहा है औरतों के साथ, पैरेलल समानांतर चलता है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, देवर भाभियाँ हैं और चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक डिप्रेशन या एक अवसाद जिसको कहते हैं मानसिक तौर पर, औरत उससे ग्रसित रहती है। वो ट्रिगर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो माइग्रेन का है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से हमारे उसमें ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं सडनली, फिर एकदम से वो किल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण औरतों में ज्यादा पाया जाता है।
4: यानी आपका कहना है कि डिप्रेशन से,
5: डिप्रेशन ही इसका
4: माइग्रेन बीमारी का,
5: एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराएगा और स्टार्ट हमेशा डिप्रेशन से होगा
4: जी।
5: वो स्प्रेड करेगी बॉडी में, डिप्रेशन के बाद ही ये चीजें जनरली आती हैं।
4: एक्यूट में होता है ये माइग्रेन जबरदस्त,
5: एग्जैक्टली ये बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट का हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर से ही बनाते हैं, और आमतौर पर दर्द खत्म होने के बाद ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये माइग्रेन था, क्योंकि आमतौर पर इस दर्द के बाद पेशेंट इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उस पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती, दर्द चला जाता है, लेकिन एक दो दिन वो इतना परेशान रहता है, उसकी दर्द की वो हालत कर दी होती है बॉडी की कि वो पूरा ड्रेन्ड होता है।
4: बच्चों में भी क्या इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
5: बच्चों से अगर हम ये कहें तो हम लेट चाइल्डहुड यानी कि बच्चों की देर वाली अवस्था, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही ये बीमारी आमतौर पर शुरू हो जाती है, लेट 20s अर्ली 30s इसमें ज़्यादा जाती है। फिर एक बार जो हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ती नहीं है, उसे सिर्फ प्रिवेंशन ही रह सकता है और इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं कि एक बार ठीक कर दिया दोबारा नहीं आएगा, वो रिकरेंट आएगा, इसीलिए माइग्रेन है
4: जी। जी
5: तो बच्चों में जरूर पाई जाती है लेकिन 12-14 साल की उम्र के बाद, उससे पहले आमतौर पे नहीं मिलती।
4: यानी आप ये मानते हैं कि डिप्रेशन से माइग्रेन की बीमारी?
5: बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है जिसके बाद ये अपने पूरी तरह से बाहर आता है बीमारी, तो स्टार्ट उसका डिप्रेशन से ही।
4: इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है या?
5: जी नहीं, जी नहीं, इसमें सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्जरी की वजह से होता है। हाँ, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी करते समय ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है हमारी बॉडी में, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो पॉसिबल है उससे वो ट्रिगर हो सकता है कभी ना कभी।
4: अच्छा, इस बीमारी से कितनी परसेंटेज ग्रस्त है?
5: बहुत कम, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ रही है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल की बहुत भागम भाग जिंदगी, तनाव इतना ज्यादा है, काम का लोड ज्यादा है, तो हर दिन ये बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर।
4: डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
5: देखिए, मैं तो किशोर के गानों का ही फैन हूँ, तो अपनी पसंद से किशोर का कोई गाना सुना सकते हैं या फिर सफर फिल्म का एक गीत सुनवा दीजिए, सफर के सारे गाने अच्छे हैं।
4: आपकी पसंद का गीत हम सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
5: थैंक यू।

0: डॉक्टर शीतल कुमार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे माइग्रेन के बारे में, हम बात कर रहे हैं
1: जी।
0: अब अगर हम लक्षण की बात करें, अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को पहले ही पता चलता है कि मुझे इस तरह की बीमारी होने वाली है, इसके लक्षण क्या है?
1: देखिए, लक्षणों को हम थ्योरेटिकली किताबी भाषा से तो 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके 4 स्टेजेस हम मानते हैं, जिसको पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसके मेरे को 4 स्टेजेस में ये बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने या समझने के हिसाब से उसको हम इसमें बांटते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं, जो कि बीमारी से पहले की स्टेज होती है। फिर एक ऑरा स्टेज होती है, जिसमें पेशेंट की ब्लरिंग होती है, विजन की साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें चुंधी आती हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और सबसे जो मेन लक्षण है, तीसरा आता है इसका, सिरदर्द का, जिसको हम हेडेक कहते हैं, जो सबको पता चलता है कि अब हो गया
0: जी।
1: और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाने के लिए,
0: इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
1: इन्वेस्टिगेशन जनरली इसकी क्लिनिकल ही होती है
0: जी।
1: इसके ब्लड टेस्ट या ये सब कराने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, इसकी क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है। पेशेंट की हिस्ट्री सुनकर, उसको जानकर कि कैसे शुरू हुआ, कितनी देर हो गई, कितना लंबा अटैक आया, उससे ही बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी हमारा जो रहता है वो उसका पोस्ट्रोम, यानी कि बीमारी ख़त्म होने के बाद की स्टेज है।
0: कितने दिनों तक माइग्रेन रहता है?
1: आमतौर पे 1 या 2 दिन तक माइग्रेन रहता ही है, कई लोगों को 3-3 दिन भी चलता है। तो एक टर्म होती है, 3 दिन से ऊपर जिसका माइग्रेन कंटिन्यू कर जाता है, उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसस कहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेन के अटैक में रहता है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फुल्ली ड्रेनड आउट हो जाता है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन तक रहता है
0: जी।
1: तो प्रोड्रोम, जो मैंने आपको बताया कि जो बीमारी के आने से पहले की स्टेज है, उसमें ये समझ लीजिए कि 4-6 दिन या हफ्ता पहले पेशेंट को कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं कि कुछ मेरे साथ गलत है, वो सो नहीं पाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और अपने किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गलत मेरे शरीर में हो रहा है। तो सेकेंड स्टेज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऑरा की, वो सब मरीजों में नहीं पाई जाती, किसी में जनरली 50-60% तक होती ही नहीं
0: जी।
1: और जिनको होती है उनको जनरली आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती दिखाई देती है, साफ नहीं देख पाते हैं, अदरवाइज़ वो ठीक देखते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो थोड़ा सा कम देख पाते हैं।
0: ये जो माइग्रेन है, सिर के पूरे हिस्से में होता है या?
1: जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, वैसे तो सेट करेक्टर नहीं है, लेकिन आम तौर पर आपको ये सिर के आधे हिस्से ही मिलेगा, लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में। लेकिन सिम्टम डिफर करते हैं, सेम पेशेंट में बार बार डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सेट पैटर्न पे इसी तरह का दर्द आएगा, ऐसा नहीं। तो ये कई बार फेस से भी शुरू होता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, सिर से भी शुरू हो सकता है। आमतौर पे आप इसको ये सिर के आधे ही हिस्से में मिलेगा, पूरे हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। तो हेडेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ आपको ये जो उल्टी का आना है, ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। और जो पेशेंट ये बताता है कि 1-2 दिन जा चुका है, दवाई थोड़ी बहुत खा के भी नहीं जा रहा है, तो हमारा विश्वास और पक्का होता चला जाता है कि माइग्रेन की तरफ ही है।
0: जी।
1: फिर भी 2-3 बार अटैक आने के बाद ही हम उसको लेबल करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है। अगर पेशेंट बार बार एक ही डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि 2 बार मुझे पहले हो चुका है, 3री बार आ गया है, 4थी बार हो गया है, तो फिर हम विश्वास से ये बात कह देते हैं कि अब ये माइग्रेन है और उसकी कुछ प्रिवेंशन है जो आदमी कर सकता है। और हेडेक के अलावा जो मैं बता रहा था आपको कि जो बाद वाली स्टेज है, पेशेंट ठीक होने के बाद इतना थकान महसूस करता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हमें और भी ज़्यादा विश्वास दिलाती है कि जिस बीमारी से आदमी ये ग्रसित था वो माइग्रेन ही थी। और इसके अलावा लक्षण तो ज़्यादा इसमें और दिखते नहीं हैं। और ये ज़रूर है कि
0: खास आपने बताया कि डिप्रेशन
1: से शुरू होगा, और आमतौर पर डिप्रेशन शुरू होगा, पेशेंट को नहीं पता चलता है। एक आम आदमी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं गिनता है, जबकि आज की भागम भाग वाली जिंदगी में डिप्रेशन सभी की जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है।
0: किस उम्र में ये होता है?
1: जनरली ट्वेंटीज लेडीज में ज़्यादा पाया जाएगा। और एक बार किसी में ये इस्टेब्लिश हो गया किसी को माइग्रेन, तो फिर तो रिपीटेड अटैक्स आते हैं, जो माइग्रेन का कैरेक्टर है कि रिपीटेड रिकरेंट अटैक्स, बार बार आएंगे, दर्द होगी और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में होगी कि इतने दिन की होगी, उल्टी आएगी, कुछ काम नहीं
0: ये
1: होगा।
0: कितनी बार महीने में इस तरह की?
1: अगर हम महीने का हिसाब देखेंगे तो पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का काम इस तरह का है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है, डस्ट में जाना पड़ता है, या फिर जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर उसको बार बार अटैक की तरफ लेके जाएंगे। तो
0: जी,
1: आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका प्रोफेशन ऐसा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर है, तो महीने में 10 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता।
0: जी जी और शरीर के किस अंग को ये नुकसान पहुँचाता है अगर माइग्रेन हो?
1: देखिए, कोई भी बीमारी शरीर में होगी तो सारा शरीर उससे प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, हम ठीक से खा नहीं सकेंगे, पी नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इफेक्ट है पेशेंट के ऊपर, माइग्रेन का फाइनल इफेक्ट है, दैट इज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक से खाना नहीं खा पाना, और फाइनली जब पेशेंट ठीक से आहार नहीं लेगा तो बॉडी ने वीक होना है और बहुत सारी बीमारियाँ उसको पकड़ सकती हैं। बट अदरवाइज़ किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, हाथ को, पैर को, या किसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं।
0: आपने बताया कि इसका इलाज नहीं है,
1: इलाज का एक प्रॉपर तरीका नहीं है।
0: हम इस पर चर्चा करेंगे अगले हिस्से में। अभी अपनी पसंद का एक और गाना आप जरा बताइए, कौन सी फिल्म का गाना है?
1: अक्सर हमराज पिक्चर का गाना सुनता हूं मैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: जी जी, महेंद्र कपूर की आवाज
1: जी, बहुत अच्छा गाना।
0: बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है
1: जी। बिल्कुल।

0: डॉक्टर शीतल कुमार हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के अगले आखिरी हिस्से में आए हैं। अगर हम इलाज की बात करें, आपने वैसे कहा कि इसमें इलाज कोई नहीं है, ऐसा क्यों?
1: इलाज की बात देखिए, ऐसा है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बीमारी है, हम इससे बच सकते हैं। इलाज तो किसी को दर्द है तो दवाई से वो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन बीमारी को हम अप्रूट या उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरते तो उसको बार बार ये बीमारी नहीं आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंटली, जनरली लोग क्या करते हैं, दर्द होने पर एक पहला काम होता है पैरासिटामोल की गोली या एक एस्पिरिन की गोली एक ली जाती है, उसमें कुछ गलत नहीं।
0: घरेलू नुस्खा,
1: घरेलू नुस्खा है, सबको पता है, ओवर द काउंटर मिलता है, पेशेंट जाता है मेडिकल स्टोर पर, दो गोली ले आता है, खा लेता है। आम दर्द,
0: वैसे भी ये हम यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि खुद आप दवाई कोई मत इस्तेमाल करें।
1: जी, सेल्फ मेडिकेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिसका केस इस्टेब्लिश हो गया है कि माइग्रेन है तो उसको कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी पड़ती हैं कि सडनली कभी बीमारी आती है या दर्द आती है तो उसको एकदम से कुछ इलाज तो चाहिए। लेकिन माइल्ड अटैक में या माइनर अटैक्स में हम ये समझते हैं कि एस्पिरिन या पीसीएम खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंट को डोज का पता नहीं। ले तो सकता है, पीसीएम ले आएगा, बच्चा 12 साल का है, पीसीएम कितना खिलाना है ये नहीं पता है। अपने हिसाब से वो बच्चे को सोचेगा कि 12 साल का है, आधी गोली दे देते हैं या उसका एक क्वार्टर दे देते हैं। तो हायर मेडिकेशन या लो डोसेज में एक मेडिकेशन हमेशा नुकसान करेगी, एक प्रॉपर डोज में नहीं आएगी, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक माइनर अटैक है, पीसीएम का उसको पता है, तो वो ले सकता है और उससे चला भी जाएगा, एस्पिरिन की गोली से, पैरासिटामोल की गोली से वो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अटैक थोड़ा मॉडरेट या सीवियर होता है, वहाँ फिर ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो प्रोफिलेक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपको बचना है लंबे सफ़र से, पहाड़ी सफ़र से, भीड़ से, तेज़ मसाले वाले खाने से, और जैसे बहुत शोर वाला इलाका है उससे, धुएं से, पॉल्यूशन से, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है तो हरिद्वार सब लोग दौड़ते हैं कि आज वहाँ नहाने जाना है, कुंभ का मेला है, कुछ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक आस्था होती है, जाना होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहुँचने के लिए भी भीड़ वाली बस में ठसाठस भर के जाएगा और उसको जब पहुँचने से पहले उसको माइग्रेन का अटैक डेफिनेटली आ जाएगा।
0: जी जी,
1: वहाँ जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत कंजेशन होगी, वहाँ परेशान रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
0: आपने बताया डॉक्टर साहब कि खाने पीने की चीज़ों को एहतियात।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज़ मसाला है, तेज आपको गैस्ट्राइटिस कराएगा और जब भी वॉमिटिंग आदमी इंड्यूस होगी उसमें माइग्रेन को हेल्प करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है,
0: जी जी,
1: हर आदमी बर्गर के पीछे दौड़ता है, हॉट डॉग के पीछे दौड़ता है, छोटे छोटे गाँव में भी हॉट डॉग की रेडी आपको देखने को मिलेंगी आजकल। सबसे पहली बात, हाइजीनिक नहीं होता है, साफ नहीं होता है,
0: जी जी,
1: पहली बीमारी वहीं से। अगर माइग्रेन नहीं आएगी तो कोई पेट की बीमारी आएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो हॉट डॉग बेचते हैं, पर अगर वो सफाई से बेचें तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं।
0: जी जी,
1: लेकिन अगर उसको ठीक से ढक के रखें, बरसात है, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, जो चीज़ें ख़राब है उनको फेंक दें, नए सिरे से ले लें।
0: डॉक्टर साहब, परमानेंट सोल्यूशन इस डिजीज़ का
1: यही है सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोड्रोम स्टेज है, पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और जिसका एक बार ये डिज़ीज़ इस्टेब्लिश हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि ये माइग्रेन आपको है, उस पेशेंट को हमेशा अपने कैरी बैग में या अपनी सबसे नज़दीक वाली अप्रोच वाली जगह पे एक मेडिसिन का स्ट्रिप रखना चाहिए कि जो मैं इमरजेंसी में खा सकूं। दूसरी बात, अटैक आने से पहले अगर मेडिसिन ले ली जाती है तो उससे क्या होता है, अटैक अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आता है, वो एक आध दिन में सबसाइड कर जाएगा और दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट उस समय लापरवाही करेगा कि सिर में दर्द ही है, चला जाएगा, कल तक चला जाएगा, जिसको पता नहीं है माइग्रेन वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है उसको कभी इससे वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
0: अगर हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं में इस तरह की बीमारी ज्यादा होती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: महिलाएं हमेशा अपने साथ एक पर्स कैरी करती हैं, हैंडबैग कैरी करती हैं।
0: वो तो ठीक है, लेकिन और क्या परहेज करना?
1: परहेज यही है कि सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी बात है,
0: और तनाव
1: मुक्त रहना चाहिए। भजन भक्ति तो औरतें करती ही हैं, उससे बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है। आजकल योगा का चलन हो गया है तो योगा से भी हम इसको रोक सकते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है कि पैरासिटामोल की टैबलेट और उसके साथ एंटीमेटिक हम कहते हैं जो उल्टी रोकने वाले ड्रग्स हैं, जैसे पेरिनॉर्मल लोग लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में लें तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और सिविल अटैक में हम एर्गॉट के डेरिवेटिव्स लेते हैं जो एक वैसोग्रेन जनरली लोग टैबलेट ले लेते
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: उसमें होता है, लेकिन किसी को उल्टी का मन है तो वैसोग्रेन को अवॉइड करना चाहिए।
0: जी
1: और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि हमें तनाव मुक्त रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुबह की सैर है, योगा है, ये सब चीज़ें आदमी को तनाव से मुक्त करती हैं और
0: बिल्कुल
1: माइग्रेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
0: डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस आज के कार्यक्रम में। माइग्रेन पे हमने बात की, विस्तार पूर्वक बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का चलते चलते गीत बताइए, कौन सा हम आपको सुनवाएं?
1: चलिए, अब चलने का समय हो गया है तो एक तेरे घर के सामने एक फिल्म है, उसका गाना है देखो रूठा ना करो, जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ,
0: जी जी जी
1: वो
0: आज
1: आप
0: भी
1: रेडियो
0: आज
1: पे सुनवा दीजिए।
0: चलिए आज भी हम उन्हीं के लिए ये डेडिकेट करें आपकी तरफ से।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। माइग्रेन पे आपने तफसीलन जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय रहा माइग्रेन, कारण और उपचार। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: जो भी होगा अच्छा होगा, ये मत सोचो कल क्या होगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। और जैसा कि हर बार आपके लिए लघु कथाओं की श्रृंखला लेकर आता हूं, सोचा कि आज कुछ अलग लेकर चलूं। और ये जो अलग मैं लेकर आया हूं ना, इसकी रचना की है शंभू सिंह जी ने। एक बार सोचने पर तो विवश कर ही देगा, बस शीर्षक तो आप खुद रख लीजिएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक बार जाओ तो सही वहां। मुझे नहीं पता कि आप किस शहर में रहते हो। किसी दिन बैग में एक आध कपड़े रख के निकल पड़ो बनारस। कहते मुंबई माया नगरी है, यहां छोटे छोटे इंसानों के ना बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। पर बनारस ये वो जगह है जहां पर इंसान बड़े से बड़े सपने को जलते हुए मिट्टी में खाक होते हुए देखता है। एक चादर रख लेना अपने साथ में, या फिर बनारस स्टेशन के बाहर ना 10 रुपए में पन्नी हुई पॉलिथिन वो ले लेना, और पहुंच जाना सीधे मणिकर्णिका। ये वो जगह है जहां इंसानी लाशों के जलते हुए उजाले में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है। एक रात करीब भूल जाना कि तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, कितना तुम्हारे बैंक अकाउंट में है जो तुम डेबिट में लिए घूम रहे हो, और वो पैसे जिन्हें तुम अभी तक निकाल के 5-स्टार होटल तक बुक कर सकते हो। भूल जाना कभी अपने पैरों पर पड़े हुए जूते की कीमत, या कलाई में टिक टिक करती हुई घड़ी की कीमत। बस पन्नी बिछाकर बैठ जाना एक कोने में और देखना चुपचाप वहां का तमाशा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सच दिखाई देगा। तुम देखोगे कि कैसे वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी सब कुछ भूल कर अपने सपनों को पूरा करने में बिता दी ना, कैसे यहां औंधे मुंह पड़े हुए हैं। वो लोग जिनके पास कभी समय नहीं रहा ना लोगों के लिए, उन्हें कैसे लोग जलते हुए छोड़कर चले जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने ईगो में आकर किसी के सामने झुकना नहीं स्वीकारा, वो कैसे अभी गिरे पड़े हैं, और इस कदर गिरे हुए हैं कि बिना 4 लोगों के उन्हें उठाना भी मुश्किल है। वो लोग जिन्हें गुमान था अपने हुस्न का, अपनी एक एक चीज पर, आज कुछ घंटों के बाद उनका यहां कुछ भी अपना नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो लोग जिन्होंने ठोकर मार दी उनको, जिन्होंने सबसे ज्यादा चाहा, और आज उनके पास कोई आखिरी लौ बुझने तक साथ बैठने वाला नहीं है। वो लोग जिन्होंने पहने महंगी घड़ियां, पर आज पता चला कि समय क्या है। वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों को दुख दिया, उनकी आवाज आज उनकी चटकती हड्डियों से कैसे निकल रही है। तुम देखोगे कि यहां जो हो रहा है ना, यही सच है, बाकी सब झूठ है। कभी भी किसी को दुख मत दो। हां, पता है कि दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं रखा जा सकता, पर हर कोई आपसे दुखी भी तो नहीं हो सकता। अभी मैं कुछ भी कर दूं कितना बुरा, उससे दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। और वही तुमसे दुखी होगा जो तुमसे प्यार करता हो, जो तुमसे जुड़ा हो। तो अगर तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो पहले ही बोल दो, और उसे भी उन्हीं बाकी के सेलिब्रिटीज वाली कैटेगरी में डाल दो। वरना एक बार जुड़ जाने के बाद ना, कभी भी किसी को रुलाना नहीं चाहिए। अपनी वजह से या अपनों की वजह से किसी को क्यों आंसू आए, कभी किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, वरना ये आह चीखती है, चिल्लाती है, जलती हुई हड्डियों से इसकी आवाज दूर तक शमशान पर गूंजती है। और उस वक्त कोई सुनने वाला भी नहीं होता। एक दिन तो
इस शरीर को अकड़ ही जाना है। अरे तब किसके लिए इसके अकड़ को थोड़ा किनारे रख लो, अभी क्यों अकड़ रहे हो। बस एक रात की बात है, जाओ कभी मणिकर्णिका। क्या समझ नहीं आया, फिर बताता हूं। अरे मणिकर्णिका बनारस में, सब सीख जाओगे बिना किसी के सिखाए। यकीन करो अगली सुबह अपना बैग, घड़ी और जूते, शायद खुद को भी साथ लेकर वापस आने का मन नहीं होगा, क्योंकि जलती हुई हड्डियों की चीखें ना बहुत सन्नाटा भर देंगी तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर जो किसी का दर्द और दुख हंसते हुए ले लेने के लिए काफी होगा। इसीलिए कहता हूं, जब तक जीवन है ना, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत दो, हो सके तो किसी के आंसू पूछ लो। वैसे बिना मतलब कोई किसी के आंसू पूछता नहीं है, कहते भी हैं अगर आंख में आंसू आए ना तो उनको खुद पहुंचो, कोई दूसरा पहुंचेगा ना तो सौदा करेगा।

तो शुभ ओजान एफ एम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

भी अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

कहे रही संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे, सोई सांझे मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है, दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर, जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं। ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझ कर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का मित्र हो सकता है, इसी तरह माँ बेटे में मित्रता हो सकती है, पति पत्नी में भी मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि हम उम्र के लोगों के मध्य ही मित्रता हो। सच्ची दोस्ती व्यक्ति को सदैव सही मार्ग दिखाती है। नुक्ताचीनी को मित्रता कहना अनुचित होगा। परिवार के बाद दोस्त व्यक्ति की दूसरी प्राथमिकता होती है, जिसके साथ वो हर अच्छे बुरे पलों को व्यतीत करता है। सुविख्यात कवि रहीमदास द्वारा एक चर्चित दोहा में कहा गया, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब, सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं,

क्योंकि वह मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं, जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यवसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरना लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, जिसे न आप बदल सकती हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंदी है। कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। राजेश खन्ना नहीं रहे। 18 जुलाई 2012 राजेश खन्ना इस दुनिया फानी से कूच कर गए और कह गए, क्या फर्क है 70 साल और 6 मिनट में, मौत तो एक पल है। समान 100 बरस का और पल भर की खबर नहीं। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में मातम की लहर दौड़ गई। राजेश खन्ना ने आशीर्वाद में अंतिम

राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर सन 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश का असली नाम जतिन खन्ना था और अपने अंकल के कहने पे जतिन राजेश खन्ना बन गए। एक टैलेंट हॉन्ट के दौरान राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 10,000 में से सिर्फ 8 लड़के ही चुने गए, उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना।

राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत सन 1966 में रिलीज के लिए तैयार हुई, लेकिन उनको जीपी सिप्पी ने राज फिल्म में ब्रेक दिया। इस अदाकार ने सन 1969 से 1975 तक फिल्म आराधना और फिल्म दो रास्ते से अपनी कामयाबी की शुरुआत की। इस दौरान 15 सुपरहिट फिल्में दी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिला। फिल्म आराधना के अलावा सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद रोटी, खामोशी और आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड

राजेश खन्ना को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 14 बार नामांकन हुआ था और 3 बार ऐसे बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना ने उस जमाने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया, हेमा मालिनी, मुमताज, तनुजा, आशा पारेख, वहीद रहमान, लीना चंद्रावरकर और शर्मिला टैगोर। हेमा मालिनी के साथ राजेश खन्ना ने 15 फिल्मों में काम किया, जबकि एक्ट्रेस मुमताज के साथ 8 सुपरहिट फिल्मों में काम किया।

लड़कियों के बीच राजेश खन्ना की मकबूलियत इस कदर थी कि लड़कियां राजेश खन्ना के फोटो के साथ शादी करती थीं और खून से उन्हें खत लिखा करती थीं। राजेश खन्ना की कामयाबी में संगीतकार आर डी बर्मन और गुलकार किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर डी बर्मन ने 40 फिल्मों में संगीत दिया।

एक्ट्रेस मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ सुपरहिट जोड़ी के अलावा राजेश खन्ना का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। टीना मुनीम से प्यार की खबर के अलावा अंजू महेंद्र से उनके अफेयर की भी काफी चर्चा हुई। इन चर्चाओं पर खुद ही रोक लग गई जब अचानक सन 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली और ट्विंकल और रिंकी खन्ना के

गांधी के कहने पर राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ चुनाव भी लड़े। लाल कृष्ण अडवाणी को चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी।

दोस्तों आपको याद होगा, राजेश खन्ना ने छोटे पर्दे पर भी 2001 में अपने पराये और इत्तेफाक जैसे सीरियल में नजर आए और यह सिलसिला 2008 में सीरियल भाभी मां तक

राजेश खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से भी जाना जाता रहा। सुपरस्टार के दौरान राजेश खन्ना के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल हुआ करता था, ऊपर आका

80 के दशक के अंत में राजेश की पहली पारी का अंत हुआ। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।

सन 1994 में राजेश खन्ना ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। 1994 में खुदाई, 1999 में आ अब लौट चले। 2002 में क्या दिल ने कहा और सबसे अंत में वफा सिनेमा घरों में आई।

सन 1991 में 25 साल इंडस्ट्री में पूरा करने पर उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इन 25 सालों में राजेश खन्ना इंडस्ट्री में वाहिद एक हीरो बने रहे जिन्हें बतौर लीड रोल 106 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सन 1966 और 1975 के दौरान राजेश खन्ना की 35 फिल्मों ने गोल्डन जुबली का खिताब हासिल किया और सन 1966-91 के दौरान 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली खिताब हासिल किया।

फिल्म गीत गाया पत्थरों के ऑडिशन के दौरान जितेंद्र को राजेश खन्ना ने ही कुछ फिल्मी टिप्स दिए थे। इस तरह वी शांताराम ने जितेंद्र को पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों के लिए साइन किया। राजेश खन्ना ने एक ही फिल्म में डिंपल कपाड़िया के साथ काम किया। फिल्म थी जय शिव

फिल्म आपकी कसम के दौरान सन 1974 में बीबीसी ने राजेश खन्ना पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका टाइटल था बॉम्बे सुपरस्टार। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने कहा था कि महिलाएं राजेश खन्ना की दीवानी थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में घंटों तक खड़ी रहती थी।

दरअसल राजेश खन्ना के साथ काम करने को लकी मानते थे। सन 1969 में फिल्म दो रास्ते और सन 1986 में फिल्म अमृत के लिए संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आम तौर पे राजेश खन्ना की फिल्मों में अशोक कुमार, सुजीत कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, असरानी बिंदु, विजय अरोड़ा, रुपेश कुमार, दीना पाठक और एके हंगल जैसे मंच कलाकार नजर आते थे। दोस्तों में शामिल रहे हैं राज बब्बर, जे ओम प्रकाश, प्रेम चोपड़ा, डी रामा नायडू और जितेंद्र। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं।
1: अमीन साहब, आदाब।
2: आदाब भैया, आदाब।
1: आज का प्रोग्राम समर्पित है राजेश खन्ना के नाम। राजेश खन्ना साहब के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आपकी।
2: पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं चाहता था बहुत कि वहाँ स्मशान घाट पहुँचूं, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और मेरा बेटा गया मेरी तरफ से वहाँ, लेकिन अफसोस कि वो अंदर घुस ही नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं क्या अर्ज करूं। और मतलब ये इससे पता चलता है कि राजेश खन्ना की यादें और उनकी उनका प्रेम अब तक लोगों के दिल में बसा हुआ है। मैं उसके बाद उनके चौथे पर गया था, कंडोलेंस मीटिंग थी और वहाँ कई लोगों से मुलाकात की, सबके चेहरे उदास थे। और एक गजब की चीज भी मैंने सुनी वहाँ, राजेश खन्ना की अपनी आवाज में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया कि किस तरह वो, ये पता नहीं किसका इंटरव्यू था, उसमें सिर्फ राजेश बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्टेज की दुनिया से आए और कैसे धीरे धीरे उन्होंने तरक्की की।
1: जी।
2: ये स्टेज पर काम करने वाली बात जो राजेश की थी, मेरा ख्याल है वो उनकी अदाकारी को संवारने निखारने में सबसे बड़ी बात थी। वो जब आए तो एक तैयार एक्टर थे, उनको एक्टिंग सीखनी नहीं पड़ी। हाँ, फिल्मों के लिए स्टेज और फिल्म में जो थोड़ा सा फर्क होता है वो एडजस्टमेंट उन्होंने पूरी तरह कर लिया और उसके बाद तो वो अपनी अदाओं से, अपनी खास हरकतों से, अपने खूबसूरत चेहरे से, अपनी मधुर आवाज से वो बस बढ़ते ही बढ़ते चले गए। मैंने उनकी कई फिल्मों में काम इसलिए किया ताकि मतलब इस तरह से कि मैं पब्लिसिस्ट उसका था रेडियो पर।
1: जी।
2: और इस लिहाज से मेरी मुलाकात कई बार उनसे होती रही। एक इंटरव्यू सिर्फ मैंने उनका किया और वो कब, जब उनकी शादी होने वाली थी डिंपल कपाड़िया से,
1: 1973 में,
2: खैर साल तो मैं भूल गया
1: जी,
2: था।
1: जी।
2: और शादी से करीब 4 रोज पहले मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर उनके घर पहुंच गया और उनसे खूब बातें हुई और उन्होंने कहा मुझे कि जब मैंने पूछा कि शादी के बाद क्या डिंपल काम करेंगी फिल्मों में, तो कहने लगे नहीं, वो तो बस ये बॉबी आखिरी फिल्म है उनकी और उसके बाद वो कोई काम नहीं करेंगी क्योंकि पत्नी को घर में रहना और पति के साथ रहना ज्यादा अच्छा रहता है। मगर और उसके बाद वो रहने भी लगी उनके साथ, 2 बेटियां भी पैदा हुई, मगर न जाने क्यों उसके बाद क्या हुआ कि बात थोड़ी बिगड़ी
1: जी।
2: और वही

0: बात हुई जो कि बॉबी के एक गीत में बॉबी की हीरोइन डिंपल ने कहा था अपने हीरो ऋषि कपूर से कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं महके चले चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो।
1: जी
0: और वो चली गई महके, और दोनों अच्छे कलाकार अच्छे लोगों के बीच एक दीवार सी बन गई। इस दीवार की वजह से आखिर तक, यानी राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक ये दोनों अलग रहे। और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल में आना जाना शुरू हो गया, तो एक अच्छी पत्नी की तरह डिम्पल फिर उनके पास चली गई और उनकी देखभाल भी की, उनके हॉस्पिटल ले जाने लाने में, वहां से लाने में उनका और उनके दामाद अक्षय का बहुत बड़ा हाथ था।
1: जी
0: और इस तरह से मामला चलता रहा कि आखिर सांस रुक गई और एक बहुत बड़ा कलाकार जो था वो खत्म हो गया।
1: अमीन साहब, जिन दिनों आप सिलोन में थे उस वक्त कोई ऐसी कोई याद उनके साथ जुड़ी हुई है?
0: या तो फिल्म पब्लिसिटी के थ्रू रहा, या फिर वैसे दोस्ती के जरिए और उनके दोस्तों से दोस्ती के जरिए, मसलन आर डी बर्मन बड़े दोस्त थे उनके, और
1: किशोर
0: आर डी
1: कुमार,
0: मेरे भी दोस्त थे भाई की तरह,
1: किशोर कुमार,
0: किशोर कुमार
1: जी
0: भी। तो
1: जी जी
0: इन सब से मिलना और उनसे बात करना राजेश की, ये होता होता रहता था। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि मेरे प्रोग्राम गीतमाला से ताल्लुक रखती है, और वो ये कि राजेश वैसे तो आते ही छाने लग गए थे और उनके गीतों ने भी धीरे धीरे काफी धूम मचानी शुरू कर दी थी, लेकिन आगे चलकर जब आराधना में उन्हें किशोर कुमार की आवाज मिली पहली बार, तब तक तो किशोर गाया करते थे सिर्फ अपने लिए या देवानंद के लिए, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के चेहरे पर जब किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, उनके लब हिलने लगे किशोर की
1: जी
0: आवाज पर, तो ऐसा तहलका मचा कि बस करीब करीब सभी गीत टॉप हिट हो गए। और राजेश खन्ना न सिर्फ अपनी अदाकारी के जरिए बल्कि अपने खूबसूरत गीतों के जरिए भी लोगों के दिल में और गहरे उतरते चले गए।
1: कहा जाता है कि लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, ऐसा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी कि कुंवारी लड़कियों की के तो वो फेवरेट थे ही, लेकिन बूढ़ी औरतों के यानी अम्मा नानियों का भी ये हाल था कि वो बड़ा प्यार करती थी, जैसा उनको अपना बेटा कहती थी, समझती थी और दुआएं करती थी उनके लिए, और छोटे बच्चे भी खूब मजा लेते थे उनकी अदाकारी का। तो वाकई वो पहले सुपरस्टार बने फिल्मी दुनिया के, यानी उनसे पहले तीन तो थे ही जो धूम मचा रहे थे,
1: जी
0: दिलीप और राज और देव, लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार कहलाए गए वो यही थे।
1: अमीन साहब, आखिरी दिनों में कभी आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला?
0: नहीं, मेरा तो ताल्लुक काफी वर्षों से बिल्कुल ही नहीं रहा था, बल्कि मेरा ही क्यों, किसी का भी ताल्लुक नहीं रहा था उनसे। मैंने देखा टीवी पर देखा कि एक बार वो किसी फंक्शन में आए थे और कुछ बोला था उन्होंने, और वो कविता जो उन्होंने दाग में बोली थी ना,
1: जी
0: उसको एक नए अंदाज में जरा जोश के साथ पेश किया था। अमिताभ बच्चन कंपेयर कर रहे थे उस शो को,
1: जी जी जी
0: लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे, बल्कि वो खुद अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान के लोगों से जरा दूर ही चले गए थे, एक हर्मिट से बन गए थे वो, और मुलाकातें लोगों की जरा कम ही होती थी, बीमार भी रहते थे। उनका उनका चेहरा आपने देखा ही होगा,
1: जी
0: दाढ़ी तो
1: जी
0: थी और गोया दाढ़ी छुपा रही थी उनके चेहरे का मुरझाना, तो बहुत बहुत बीमार, बहुत बूढ़े से लगने लगे थे वो।
1: ये भी उन दिनों कहावत थी कि ऊपर आका और नीचे काका।
0: ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने नहीं सुना, लेकिन
1: जी
0: ये सही सही है कि सब उन्हें काका कहते थे, मैंने उन्हें काका नहीं कहा कभी क्योंकि वो थे मुझसे जरा छोटे
1: जी
0: तो मैं राजेश जी का कहा करता था उनको।
1: अमीन साहब, किसी गाने के जरिए आप उनको याद करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए?
0: जिंदगी का सफर है ये ऐसा सफर, कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, बहुत दिल को छू लेने वाला गाना था ये, और मेरा ख्याल है उन्हें उनकी याद में ये गाना जरूर बजाना चाहिए।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आपको मालूम है राजेश खन्ना के आखिरी अल्फाज क्या थे?
1: किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आता। प्यार आप मुझे भेजते रहे, प्यार मुझे मिलता रहा, लेकिन उस प्यार को मैं कभी वापस लौटा नहीं पाया। लेकिन जो भी कहना चाहूंगा, जिन अल्फाजों में भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्हें दिल की सच्चाई होगी, मेरी ईमानदारी होगी, मेरा जमीर होगा। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि चलिए इस बारे में आपसे मुलाकात हुई। किसे है? अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका एक हिस्सेदार मैं भी हूं, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आपका प्यार था, आप वहां प्यार मौजूद हुए इतनी भारी संख्या में, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और मेरा बहुत बहुत सलाम।
0: जाती तौर पे राजेश खन्ना से मेरी मुलाकात पहलगाम कश्मीर में हुई थी फिल्म रोटी की शूटिंग के दौरान, और मुझे आज भी याद है। कश्मीर के दिल फरीब और हसी मनाजिर, खूबसूरती से वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। मेरी और उनकी बातचीत के दौरान वो अपने सिर को अपने ही अनोखे अंदाज में हिलाते रहे।
2: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन।
0: और वही उनका अंदाज हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता रहा।
2: गर्मी के निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है।

6 मई 2012 दिन के 1:40 पे मौत ने दस्तक

सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं, अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेश शर्मा से की गई भेंटवार्ता। आपकी भेंटवार्ता का विषय है आयुर्वेद, बवासीर, कारण और उपचार।
2: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। ये क्या है ये आयुर्वेद?
3: आयुर्वेद की पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानवजत्स यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्चेते। आयुर्वेद ये वो ग्रंथ है, ये वो विज्ञान है जिसमें आयु को दीर्घ करने की और आयु को स्वस्थ रखने की विधियां बताई गई हैं। इस सारे ग्रंथ को आयुर्वेद कहते हैं
2: जी।
3: आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ भी आयु से संबंधित वेद और उस पर आधारित हम जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा अपने स्वस्थ शरीर को और अधिक दीर्घायु बना सकते हैं, उसी को आयुर्वेद कहते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है?
3: आयुर्वेद का जो अवतरण है या आयुर्वेद का इतिहास हम कहें तो आयुर्वेद की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों के इलाज के लिए उस समय जो पद्धति मौखिक रूप से अपनाई या अपने शिष्यों में बांटी, उसको आयुर्वेद के द्वारा ही अवतरण हुआ। ब्रह्मा से अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों से इंद्र को और इंद्र से धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया और धन्वंतरी से आगे चलकर आयुर्वेद लिखित रूप में हमारे सामने आया। उससे पहले तक आयुर्वेद मौखिक चिकित्सा पद्धति के लिहाज से ही इस्तेमाल में आता था।
2: कितने साल पुरानी की बात है?
3: आयुर्वेद का इतिहास कोई 5,000 साल पुराना है
2: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ये जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ये कहां से मिलती हैं, कैसे तैयार होती हैं?
3: आयुर्वेद दवाइयों का जो मूल रूप से आधार है वो है औषधियां, जिनको कहते हैं हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों के अलावा आयुर्वेद की कुछ औषधियों का आधार जानवरों से भी है
2: जी।
3: कुछ समुद्र से कुछ चीज़ें जो निकलती हैं उनसे भी उनका आधार है। हमारे जो कुछ धातें हैं जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, जिंक है, एल्युमिनियम है, इन धातुओं का भी समावेश आयुर्वेद की औषधियों में किया गया है। और आयुर्वेद को जड़ी बूटियों तक ही सीमित करना हमारा लक्ष्य नहीं है। आयुर्वेद को काफ़ी विस्तार पूर्वक औषधियों के द्वारा जांगम द्रव्यों और उद्विज द्रव्यों, जिसमें जानवरों से तैयार की हुई औषधियाँ और जड़ी बूटियों से तैयार की हुई औषधियाँ, सभी का आयुर्वेद में समावेश होता है। आयुर्वेद इस सिद्धांत पर चलता है कि जहाँ जो रोग उत्पन्न होता है उसकी औषधि भी वहाँ पर ही ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। तभी तो जो जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास में पैदा होती हैं उन्हीं जड़ी बूटियों से उस इलाके में जो प्रचलित बीमारियां होती हैं उन्हीं का इलाज उससे हो जाता है
2: जी।
3: तो आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है ये बिल्कुल प्रकृति से मेल खाता है, और चूंकि प्रकृति से मेल खाता है इसलिए औषधियों में दुष्प्रभाव बहुत कम है।
2: अच्छा, ये जो जड़ी बूटियों की बात आपने की, कैसे रिसर्च होती है, कैसे तहकीक होती है कि ये वाकई जड़ी बूटी है जो दवाइयों के काम में लाई जाती है?
3: हाँ, ये तो अब रिसर्च की बात आजकल चूंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, रिसर्च वाकई हो रही है। हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स जैसे जम्मू की रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरी है, लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च लेबॉरेटरीज और भी हैं हमारी 5-6 जगह से, त्रिवेंद्रम में है, गुवाहाटी में है। तो आजकल रिसर्च लेबॉरेटरीज में जितना भी काम चल रहा है वो सारा काम हर्बल ड्रग्स पर चल रहा है, जो आयुर्वेद की औषधियां हैं उन्हीं पर चल रहा है। और ये हर्बल ड्रग्स जो हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 5,000 साल पहले जिस औषधि को, जिस विशेष बीमारी के लिए
2: इजाद किया है।
3: निर्धारित किया है कि कौन सी औषधि किस बीमारी में कैसे उपयोग में लाई जाती है, आज जो रिसर्च से सामने आ रहा है वो बिल्कुल उसका ही अनुरूप है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनियों की ये व्यापकता देखी जाए, उनकी ये दूरदृष्टि, जो उनकी ऐसी दूरदृष्टि ना कहें, ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने औषधियों के गुण, उनमें जो रस है, उनका जो विपाक है, जैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर वो काम करती हैं बीमारी के प्रति, तो वो उनकी प्रामाणिकता आज साइंस भी वैसी की वैसी ही सिद्ध कर रही
2: मैं आपसे यही जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि
3: है।
2: आजकल के इस मेडिकल साइंस में आयुर्वेद का कितना असर है, इनकी दवाइयों का कितना असर है?
3: आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो वाकई जिसको हम कहेंगे मिराकुलस हैं। आयुर्वेद किन कारणों से पिछड़ रहा है,
2: चमत्कारी जिसे आप कहते
3: हाँ
2: हैं।
3: चमत्कारी, हाँ आयुर्वेद किन कारणों से पिछड़ रहा है, ये कारण कुछ और हैं। अगर 5,000 साल पुरानी पद्धति आज तक चल रही है तो उसमें कुछ है, तभी वो पद्धति आज तक हम लोगों में है और हम लोग उसको अपना भी रहे हैं और इतना उसका फायदा ले रहे हैं कि हमारी जो सही तौर पर जो बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के मतलब हमारा जो तंत्र है वो उसको उतनी उन्नति के साथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं तो जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, कनाडा में आजकल आयुर्वेद के नए सेंटर्स खुले हुए हैं और
2: जी
3: उन केंद्रों में हमारे कई विशेषज्ञ, मेरे साथ पढ़े हुए मेरे जो सहपाठी हैं, वो कई बार एज गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर वहां जाकर अध्ययन का काम करवा रहे हैं।
2: यानी वहां पर आयुर्वेद का असर है,
3: हाँ वहां पर,
2: इनकी
3: और
2: दवाइयों का
3: अगर
2: असर है।
3: हाँ, और अगर भारतवर्ष जहाँ आयुर्वेद का उद्भव हुआ, जो आयुर्वेद का जनक है, वहां पर आयुर्वेद की जो दुर्गति हो रही है, दुर्गति तो हम नहीं कहेंगे, दुर्गति ये नहीं है कि आयुर्वेद की औषधियां जो हैं वो काम नहीं करती हैं। आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो बीमारी को जड़ से नहीं दूर करती हैं, प्रचलन थोड़ा सा बदल गया है। वो प्रचलन बदलने से आयुर्वेद को थोड़ा रिवर्स गियर लगा है, अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, भारतवर्ष में भी आयुर्वेद के प्रति जो पहले वाली भावना थी वो नहीं रही है। लोगों में जैसे जैसे पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, आयुर्वेद की तरफ उनकी जो स्वीकार उगती है वो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा हैं।
2: डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि साइड इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में एक गुंजाइश हमने रखी है। अगर डॉक्टर सुरेश शर्मा की कोई आपकी पसंद का कोई गीत अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए, हम भरपूर मौका आपको देंगे।
3: हाँ, मेरी पसंद का पहला गीत है ये फिल्म हमराज से, ना मुंह छुपा के जियो ना सर झुका के जियो,
2: बिल्कुल,
3: गमों का
2: बियर
3: दौर भी
2: जी
3: आए
2: जी
3: तो सर उठा के जियो।
2: बी आर चोपड़ा साहब की
3: हाँ,
2: फिल्म
3: बी आर
2: रही है
3: चोपड़ा,
2: और सुनील दत्त पर।
3: सुनील दत्त थे उसमें।
2: जी जी
3: हाँ
2: जी ये आपकी पसंद का गीत हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं।

0: डॉक्टर श्री शर्मा हमारे साथ हैं, मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि साइड इफेक्ट्स की बात हम कर रहे थे, क्या लगता है आपको? हमने सुना है कि जो आयुर्वेद में दवाइयों का इस्तेमाल होता है, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्या ये सही है?
1: हाँ बिल्कुल उचित है। बाकी ये बात नहीं है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो तरीका हमारे शरीर के अनुरूप जो विकृतियाँ पैदा हुई हैं उनको ठीक करने का है। आयुर्वेद में जो बीमारियों का कारण है वो हम वात पित्त और कफ जो तीन दोष होते हैं शरीर के, उनके आधार पर उनकी कमोपेशी को देखकर जो औषधि है वो निर्धारित करते हैं। चूंकि जो आयुर्वेदिक दवाइयों का आधार है वो प्राकृतिक हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, कुछ धातुएं होती हैं, कुछ जांगम द्रव्य होते हैं, कुछ जैसे हम ये जानवरों से लेते हैं, जैसे गोरोचन एक द्रव्य आता है, जैसे मछली का तेल है, इनका जो उद्भव स्थान है वो है जांगम, वो जानवर है।
0: जी
1: तो चूंकि ये सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और प्रकृति से जुड़ी होने के कारण इंसान भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है,
0: बिल्कुल
1: और चूंकि वो चीजें अलग नहीं है इसलिए वो चीजें हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव कम करती हैं। ये बात नहीं कि प्रभाव उनका दुष्प्रभाव नहीं होता है, दुष्प्रभाव होता है अगर उनकी जो मात्रा है वो बहुत अधिक इस्तेमाल कर दी जाए। आयुर्वेद में कुछ विष भी हैं जैसे भत्सना वगैरह है, जे अतीस है, फिर रत्ती है, ये विष औषधियां हैं,
0: जी
1: कुचला है, लेकिन ये विष औषधियां ऐसे तरीके से इस्तेमाल की गई हैं कि इनका जो विषाक्त गुण है उसको दवाइयों में तैयार करने से पहले नाश किया जाता है। और
0: यानी
1: वो
0: यानी ये हम मान के चलें कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स भी हैं,
1: साइड इफेक्ट्स होते हैं
0: लेकिन
1: अगर उनका
0: उनका
1: गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए,
0: जी।
1: बजाय इसके भी जैसे हम देखते हैं एलोपैथी दवाइयों में अगर एक बीमारी ठीक करेगी तो वो दूसरी उसको भी लगा देगी। अगर
0: बिल्कुल
1: हम एनाल्जेसिक खाते हैं तो वो गैस आपको बढ़ाएगी, चाहे आप विद इन नॉर्मल लिमिट इस्तेमाल करें, जो डोज है उसकी उसमें भी इस्तेमाल, तब भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी सुनते हैं कि मैं जब आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे बीमारी को दूर करने में इसका असर होता है, यानी समय लगता है, अगर कोई बीमारी है ठीक होने में समय लगता है।
1: हाँ ये तो बात ठीक है। ये जो समय लगने वाली बात है इसके पीछे जो आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है वो कारण है उसका। आयुर्वेद में जो चिकित्सा है वो चिकित्सा रोग की नहीं रोगी की जाती है, और रोगी में जो उसका इम्बैलेंस बना हुआ है, जो हम बॉडी की तीन एंटाइटीज लेते हैं, तीन जिस पर हमारा शरीर वो है शरीर बना हुआ है वात पित्त कफ, उसको जब सम अवस्था में लाना है तो चूंकि हम इलाज रोगी करते हैं, रोगी की अवस्था, रोगी की शरीर की शक्ति, रोगी की आयु, स्थान, भेद,
0: उसी
1: इन
0: के
1: सब
0: आधार
1: चीजों
0: पर
1: के आधार पर जब रोगी का इलाज किया जाता है
0: तो समय
1: तो
0: लगता है।
1: समय लगेगा।
0: जी,
1: ये जो हम दूसरी दवाइयाँ को जल्दी से असर करने वाली दवाइयाँ होती हैं वो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के इलाज नहीं करती हैं। हम एक ही चीज को बीमारी को देकर इलाज करते हैं तो उससे दवाइयों का दुष्प्रभाव ज्यादा हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, पाइलस की बात करना चाहेंगे, आम बीमारी है, और ये पाइलस जो है आयुर्वेद में, इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए? क्या वाकई आयुर्वेद में इस बीमारी का इलाज है?
1: आजकल
0: पहले हम पाइलस को आप थोड़ा सा डिफाइन करिए,
1: ठीक
0: पाइलस क्या है?
1: ठीक पाइल्स तो इंग्लिश में कहते हैं, हम बीमारी बवासीर को कहते हैं, जो आयुर्वेद में बवासीर का उल्लेख है वो अर्श के नाम से है, और अर्श का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है एक आरी के काटने के समान पीड़ा होना, अर्श। और बवासीर, अर्श, पाइल्स, ये बीमारी ऐसी है जिसमें मरीज को पखाने के वक्त तो उसको इतनी आरी के समान काटने की दर्द होती है जो असह्य होती है, और उस असह्य दर्द के आधार पर ही इस बीमारी का नाम अर्श रखा हुआ है। जैसे बाकी आम बोल चाल में हम इसको बवासीर भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, और एलोपैथी हम इसको हेमराइड्स कहते हैं। नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन जो इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वो हमारा आहार विहार है।
0: यानी खाने पीने
1: खाने
0: की
1: पीने का जो हमारा आहार विहार है वो सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी को फैलाने का।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए ये पाइलस जो है ये बीमारी जो है ये कोई इसकी उम्र होती है किस उम्र से इसकी शुरुआत होती है क्या ये हर एक में होती है।
1: हाँ, पाइल्स की वैसे तो उम्र 30 साल से ऊपर ही होती है,
0: जी
1: और औरतों और मर्दों में बराबर की बीमारी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि औरतों में ज़्यादा होगी या मर्दों में ज़्यादा होगी, लगभग बराबरी होती है। हाँ, इस बीमारी के बढ़ने के कुछ कारण हैं, किन लोगों में ये क्यों ज़्यादा होती है, किन लोगों में क्यों कम रह जाती है,
0: वो
1: तो
0: जरा हमें बताइए आप
1: वो जो
0: जी।
1: कारण है वो एक तो सबसे बड़ा कारण है आहार, जो हमारा खाने पीने की रूटीन है, उस पर बीमारी के बड़े कारण छुपे हुए
0: यानी
1: हैं।
0: ये
1: हाँ,
0: मसालेदार
1: मसला
0: जो
1: हाँ
0: मसालेदार
1: मसालेदार
0: वगैरह
1: चीज़ें हो गई,
0: जी जी
1: ये जो ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, या
0: जिसमें तेल का
1: लो रेजिडुअल डाइट जो है, जो रेडीमेड चीज़ें हैं, ये जिनका फीकल मैटर कम बनता है, जो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना लोगों को, और कॉन्स्टिपेशन इन इन चीज़ों का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग कम रेजिडुअल डाइट खाते हैं तो वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाती है, फीकल मैटर कम बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनती है, रूटीन में लोग 3 4 दिन के बाद लेटन जाते हैं, तो कब्जी जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है,
0: यानी वो
1: इसका
0: इसकी
1: सबसे बड़ा कारण
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: और उसके बाद लाइफस्टाइल जो है हमारा, सेडेंटरी हैबिट्स, चलना फिरना आजकल बहुत कम हो गया है, डेस्क लाइफ जो है ये ज़्यादा है, बैठे
0: जी
1: रहना हर वक्त,
0: जी जी
1: जो दुकानदार लोग हैं वो तो जिन सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर कुछ जे जो बॉडी वेट है,
0: जी
1: जो
0: वो
1: लोग
0: जब
1: हाँ
0: ज्यादा
1: मोटापापन जो है,
0: जी जी
1: और एवरेज आजकल लोग जो है उनमें मोटापा ज़्यादा आ रहा है, जो लीन एंड थिन बॉडी स्ट्रक्चर है वो
0: उसका
1: बहुत
0: कारण कि
1: कम लोग,
0: जिस्मानी वर्जिश नहीं होती है
1: हाँ
0: तो जाहिर है
1: जिस्मानी
0: कि
1: वर्ज,
0: इस तरह
1: हाँ
0: की
1: वही
0: बीमारी
1: कारण है।
0: जी
1: तो बच्चों में आमतौर पर ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है, मर्दों और औरतों में 30 साल से ऊपर की उम्र में अमूमन जे लोगों में पाई जाती है बीमारी, और इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा है कि आज 70-80% लोग जो हैं वो बवासीर के शिकार हैं।
0: डॉक्टर साहब मैं हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे लेकिन बातचीत अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हाँ, मेरी पसंद का दूसरा गाना है शोर फिल्म से, एक प्यार का नगमा है। हाँ,
0: शोर फिल्म से
1: शोर,
0: मनोज कुमार साहब
1: मनोज
0: की
1: कुमार
0: फिल्म
1: साहब
0: रही है जी जी अपने
1: की,
0: जमाने की बड़ी मकबूल फिल्म रही है
1: जया बादड़ी और मनोज कुमार की
0: जी
1: फिल्म थी
0: बिल्कुल। अब तो
1: वो,
0: वो जया बच्चन है तब तो जया बहादुरी
1: जया
0: जी बिल्कुल
1: बादड़ी
0: सही कहा आपने। आपकी पसंद का ये गीत हाजिर है।

0: जी डॉक्टर सुरेश, हम आपसे बात कर रहे थे पाइरेट्स के बारे में। तो ये आपने ज्यादा इस बात पर जोर दिया कि खाने पीने की चीजों में थोड़ी सी हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं, जिस वजह से ये पाइरेट्स या बवासीर की बीमारी पाई जाती है। यही कारण है, मेन कारण यही है।
1: बाकी एक दो कारण और भी हैं, जे हेरिडिटरी भी है, जिसको हम अनुवंशिक कहते हैं, पारिवारिक भी है, जे कुछ लोगों में, जे फैमिली में भी जे बीमारी होती
0: यानी
1: है।
0: अगर हमारे किसी
1: किसी के पिता को, किसी के
0: तो
1: दादा
0: उसके
1: को,
0: बच्चे को भी।
1: बच्चे को भी होने के चांसेस होते हैं, पर वो उसका अनुपात बड़ा कम है।
0: जी जी जी
1: पर जे अभी कुछ केसेस हम देखते हैं जिनमें हेरिडिटरी भी है जे।
0: जी जी जी तो इसका इलाज आयुर्वेद में कैसे किया
1: हाँ,
0: जाता है?
1: आयुर्वेद में दो प्रकार का इलाज है, अर्श का, और वो इलाज इसके प्रकार पर निर्भर करता है, क्योंकि अर्श दो प्रकार की होती है, एक शुष्क है, एक बादी है। एक में सिर्फ मस्से बनते हैं और एक में खून आना शुरू हो जाता है।
0: है इसमें ब्लीडिंग ज्यादा होती
1: हाँ,
0: है।
1: ब्लीडिंग। तो जैसा बीमारी,
0: ये जो ब्लीडिंग आती है ये किस स्टेज में आती है?
1: हाँ, ये जो ब्लीडिंग की बीमारी है, ये खासकर इसकी फोर्थ स्टेज होती है अर्श की।
0: जी जी
1: जो पहली और दूसरी स्टेज है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, जो तीसरी स्टेज है उसमें भी ब्लीडिंग कम होती है, और जो फोर्थ स्टेज है उसमें ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी स्टेजेस जो हैं, जो इसके प्रकार हैं बीमारी के, उसके आधार पर ही इसका इलाज है। जो पहले और दूसरे प्रकार की अर्श है उसमें औषधियों से इसका इलाज हो जाता है,
0: जी
1: और उन इलाज में अगर हम बवा इसकी कब्ज पर कंट्रोल कर लें, कब्ज ठीक हो जाए, खाने पीने का थोड़ा सुधार कर लें, हमारा आहार विहार अच्छा हो जाए, जिसमें सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें हम, फ्राइड चीज़ें होगी, लो रेजिडुअल डाइट है, इसका परहेज़ करना शुरू कर दें, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री की जो पाइल्स है, अर्श है, वो दवाइयों से ठीक हो जाता है। जब पाइल्स के मस्से जो हैं वो शरीर हमारे एनस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और एक स्टेज में वो बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, और जो फोर्थ स्टेज होती है उसमें वो परमानेंटली बाहर ही रहते हैं मस्से बने हुए। तो उस स्टेज में इसका जो शल्य चिकित्सा है वही इलाज होता है। और
0: एक में इसमें हमने बवासीर में आयुर्वेद में हमने सुना है शार सूत्र होता है। ये शार सूत्र क्या है? ये भी एक, इसको हम यूं कहें कि ये सर्जिकल एक तरीका है।
1: बिल्कुल सही सुना आपने, जो क्षार सूत्र है आयुर्वेद में, ये अर्श को, जो चौथी डिग्री अर्श है उसको, हाँ, उसको ठीक करने का एक शल्य कर्म है
0: जी।
1: और ये शल्य कर्म जो है इससे बवासीर जो है ये समूल नष्ट हो जाती है। इसका, जिसको हम कहते हैं रेडिकल क्योर है, पूरा पूरा इलाज है शल्य कर्म, जो आयुर्वेद का क्षार सूत्र है इसमें। तो क्षार सूत्र के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं, तो क्षार सूत्र एक धागा होता है, जिसको हम मेडिकेटेड थ्रेड कह लें, जो चार औषधियों से तैयार किया जाता है। इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं उस मस्से पर, वो उसका एक, उसकी गांठ लगाने का एक स्पेशल तरीका होता है। वो गांठ जब लगाई जाती है तो उसके बाद मस्सा जो है वो आस्ता आस्ता खुद ब खुद सिकुड़ कर गिर जाता है
0: जी।
1: और फिर वो दोबारा, अगर हम परहेज रखें, परहेज मतलब आहार विहार अच्छा रहे हमारा, कब्ज ना होने पाए, शरीर का वजन कम रहे, बैठने की जो हमारी रूटीन है ज़्यादा देर तक काम करने की, अगर उस पर अंकुश रहे, तो फिर बवासीर होने के आसार खत्म हो जाते हैं।
0: डॉक्टर सुरेश शर्मा, मेडिकल ऑफिसर आईएसएम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने बात की पाइल्स पर और इसके अलावा आयुर्वेद की जानकारी आपने हमें दी। हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत ही विशाल है, इस पर बहुत बातचीत हो सकती है, लेकिन समय की कमी हमारे पास है। आपसे हम इजाजत चाहेंगे, आप चलते चलते अपनी पसंद का एक गीत बताइए जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: मेरे पसंद का तीसरा गाना गजल के रूप में है, होंठों को छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे
0: जगजीत सिंह की आवाज में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद का गीत हाजिर है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: अपना समय दिया, आपका बहुत

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे मेडिकल ऑफिसर आईएसएम हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेश शर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था आयुर्वेद, बवासीर, कारण और उपचार। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग, सभी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ दुनिया सिर्फ कान नहीं सुनते, दिल महसूस करते हैं। कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। और कुछ फनकार जैसे वक्त के उस मोड़ पर मिलते हैं जहां हर सुर एक कहानी बन जाती है। पेश है कार्यक्रम सरगम। आज के सरगम समर्पित है एक ऐसे ही संगीतकार को जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत में ताल का जादू बिखेरा, ओपी नायर। आए चलिए मेरे साथ एक ऐसे गीतों की दुनिया में जहां नायर साहब के सुर, गीतकारों के बोल और गायकों के जज्बात मिलकर बनाते हैं संगीत का एक रंगीन जादूगर सफर सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं CID फिल्म के गाने से, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, गायक रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, संगीत ओपी नायर।

अब पेश है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, संगीत ओपी नायर का और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

अब पेश है ओपी नायर का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने, फिल्म सीआईडी से, और उसके गीतकार है जान निसार अख्तर।

0: अगली पेशकश है गीतकार साहिर लुधियानवी का गाना, जिसे गाया है रफी और आशा भोसले ने, संगीत ओपी नायर और फिल्म है तुमसा नहीं देखा।
1: देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

जलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्मलोगे रूठ के हमसे।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
2: पेश है रफी और आशा की आवाज में एक देसी रंग, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नायर। फिल्म का नाम है नया दौर।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, आपकी जिंदगी की रवानी। जारी है कार्यक्रम सरगम। लीजिए पेश है कश्मीर की गली का गाना, गायक रफी और आशा भोसले, संगीत दिया है ओपी नायर ने और इसके गीतकार है SH बिहारी।

सभी श्रोताओं की नज़र SH बिहारी का लिखा गाना, जिसका संगीत दिया है OP नायर ने, गाया आशा भोसले और शमशाद बेगम ने, फिल्म किस्मत से।

लीजिए, आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना फिल्म मेरे सनम से, संगीत

अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म माया से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आज के सरगम में हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने एक ऐसे फनकार की जज्बात महसूस किए जो ताल से मोहब्बत करता था और धुन से रिश्ता निभाता था। इसके साथ ही सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सरगम के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: डगर मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

शमशाद बेगम मानती थी कि कलाकार कभी नहीं मरते। अपनी खनकती और लचकती आवाज के साथ शमशाद अमर है। भले ही 23 अप्रैल मंगलवार की रात शमशाद जन्नत नशीब हुई, लेकिन जब भी हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, 1940 से 1950 के दौर में उनकी आवाज को दर्ज किए बगैर वो अधूरा रहेगा। शमशाद अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती थी और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। शमशाद की बेटी उषा के मुताबिक अपने जमाने की सबसे बेहतरीन गायिका होते हुए भी उन्होंने खुद को ग्लैमर की दुनिया से दूर रखा। उषा की माँ यानी शमशाद कहती थी कि उन्हें उनके गीतों के लिए दुनिया हमेशा याद करेगी। इसमें कोई शक नहीं, कहीं पे निगाहें मेरे पिया के रंगों, कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला जैसे गाने हर जमाने में गाए गुनगुनाए गए हैं।

शमशाद ने गीतों से लेकर गजलों और कव्वाली तक गायकी की कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसमें उन्होंने फिल्मों में नहीं गाया। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। शमशाद केएल सहगल की जबरदस्त फैन थी। शमशाद पांचवीं कक्षा तक स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए प्रमुख गायिका थी। 10 साल की उम्र में ही शमशाद शादी के समारोहों और बाकी समारोहों में पारंपरिक और लोक गीत

इसी दौर की बात है, जीनोन फोन रिकॉर्ड कंपनी नई आवाजों की तलाश में थी। शमशाद अच्छा गा सकती थी, लेकिन उनके रूढ़िवादी परिवार को संगीत से कोई लगाव नहीं था और ना ही वे लोग शमशाद के गायिका बनने के लिए राजी थे। सौभाग्य से शमशाद का हौसला बढ़ाने वाले चाचा उनके पिता की इच्छा के खिलाफ उन्हें रिकॉर्ड कंपनी के पास लेकर गए। उनका ऑडिशन मास्टर गुलाम हैदर ने लिया। मजबूरन पिता को अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा और शमशाद को गाने की इजाजत दे दी गई।

शमशाद बुरके में स्टूडियो जाती थी, पार्टी या बाकी समारोह में शरीक नहीं होती थी और तस्वीरें भी नहीं खिंचवाती थी। सन 1934 में उन्होंने गणपत लाल से शादी की। शमशाद के पति फोटोग्राफी के शौकीन थे। 70 के दशक तक भी शमशाद ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई। बात चाहे जीनाफोन कंपनी की हो या फिल्मों की, अपने पंजाबी और हिंदी गानों से शमशाद ने लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बना लिया था। उन्होंने गुलाम हैदर के निर्देशन में 200 गाने गाए।

हिंदी फिल्मों में गायन के आगाज से पहले शमशाद ने दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में भी गाने गाए। सन 2009 में शमशाद को पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। शमशाद की जादुई आवाज एक बार ही जन्म लेती है, बार बार नहीं। हिंदी सिनेमा की सबसे मीठी और सुरीली आवाज, सबसे मशहूर आवाजों में से एक आवाज अब खामोश हो गई है। शमशाद खुदा का खौफ रखने वाली और नेक ख्याल की थी, सबकी मदद करने वाली और सबसे मिलजुल कर रहने वाली।

40 के दशक में हर फिल्मकार की यही चाहत होती कि शमशाद उनकी फिल्म की गायिका बने। सुरों की मलिका की आवाज से महबूब खान भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्हें मुंबई आने को राजी कर लिया। उनके लिए शमशाद ने तकदीर फिल्म के गाने गाए। बतौर नायिका नरगिस की ये

कई दशकों तक हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक मकबूल गीतों को आवाज देने वाली शमशाद बेगम कमाल की कलाकार थी। उनका तलफ्फुज सुरों पर पकड़ और उनकी लोचदार आवाज उन्हें दूसरों से अलग करती थी। नौशाद और ओपी नैयर के साथ उन्होंने

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। आज के कार्यक्रम हमारे अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक प्रसारण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम वही बात करते हैं जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। समय के पहिए के साथ चलते हुए अब घड़ी की सुइयां हमें विदा लेने का संकेत दे रही हैं। रेडियो वेदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था, लेकिन जाने से पहले आज के विषय पर हम बात करेंगे जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बेहद उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। ये दिन देश के महान सांख्यिकीवाद, विद्वान और वैज्ञानिक प्रोफेसर शांत चरण चंद्र, प्रोफेसर पीसी महलानोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी में सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है। बिना सटीक आंकड़ों के कोई भी देश अपनी जनता के लिए सही योजनाएं नहीं बना सकता, इसलिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यह दिवस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ SPI द्वारा आयोजित किया जाता है। हर वर्ष मंत्रालय द्वारा इस दिन के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है जो समय समय एक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आधारित होती है। इस थीम के माध्यम से देश भर के सांख्यिकी विद्वान का ध्यान एक निश्चित लक्ष्य की ओर केंद्रित किया जाता है, जैसे सतत विकास लक्ष्य SDGs, डेटा सुरक्षा या डिजिटल सांख्यिकी। एक विकासशील और विशाल आबादी वाले देश जैसे भारत के लिए सटीक आंकड़े रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सरकारें तभी सही नियति और नीतियां बना पाती है जब उनके पास सटीक और वास्तविक डाटा होता है। दूसरा, देश के किस हिस्से को कितनी वित्तीय मदद या संसाधनों की जरूरत है, इसका आकलन भी सांख्यिकी के जरिए ही संभव होता है। कोई भी सरकारी योजना कितनी सफल रहे, इसका मूल्यांकन केवल आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन यानी डेटा एनालिसिस से ही किया जा सकता है। आज के इस विषय का निष्कर्ष है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि संख्याएं सिर्फ कागज पर लिखे अंक नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की प्रगति, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं का आईना है। सटीक डेटा के प्रति जागरूकता ही देश को आत्मनिर्भर और सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। उम्मीद है आज के कार्यक्रम से आपका भरपूर मनोरंजन भी हुआ होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते रेडियो वितस्ता की लहरों पर ये खास पंक्तियां सिर्फ आप सभी श्रोताओं के लिए। आज की पंक्तियां यूं हैं, डेटा और आंकड़ों से सजती है विकास की यह दास्तां। डेटा और आंकड़ों से सजती है विकास की ये दास्तां, सटीक सांख्यिकी से ही बनता है हमारा देश महान। लहरों पर बहती रहे ज्ञान और सुरों की ये अविरल धारा, लहरों पर बहती रहे ज्ञान और सुरों की ये अविरल धारा, रेडियो वितस्ता के संग महकता रहेगा ये जीवन सारा।
रेडियो वितस्ता के संग महकता रहेगा ये जीवन सारा। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण भी देता हूं। कल 30 जून दिन के महीने के आखिरी दिन मंगलवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर, वंदे मातरम से होगी शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6:00 सुनेंगे आप भक्ति संगीत, 7:05 पर घर परिवार एपिसोड 1, 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय एपिसोड 23 होगा आपके लिए प्रसारित और शीर्षक होगा अच्छी आदतें, पेश करेंगे आरजे शिवानी। 9:30 पहलू और गीत एपिसोड 11 पेश करेंगे आरजे किरणी। और 10:00 होगा बॉलीवुड की सुनहरी यादें, मोहम्मद रफी पर तैयार किया गया ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 2:00 भक्ति संगीत, 2:00 संगीत और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7:00 रेट्रो हिट्स एपिसोड 8 शीर्षक होगा रात, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम भी कुछ बात करो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी स्टेशन इसी फ्रीक्वेंसी पर कुछ और नए तराने कुछ और नई कहानियों के साथ। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।